हेलो हेलो, चय थांगा जेने कक दुख फैदेंगा हेनो हाय सब कक दुख तो नहीं। हेलो हेलो हेलो खरां खानाय आं जाक आनी आं दां दंखा ना सासुदा नेटवर्कनि इस्यु दंखा सैमालिया हेनहाय ग्रोंगि नालाय फिउनाय अजराव। हेलो हेलो हेलो हेलो थाचिंगन जों कक दुख तुई ग्रोंलाय दंलाय माने फियाबा अजराव कक दुख तुई जों मालाय आंलाय जा ग्रोंगै दिनैनि सालगामा बान्दाव जों सालायलाय दंलाय माने किन्तु हेलो हेलो

हेलो हेलो हेलो चीनी या फव कक दुक तंगफान नरक करेंगे मालय तंखा सेंटी सालकामा पांडाव सिक्लारक थानी फान अब सालय तंगलो हाई कि चं नाइन हाइन कक दुक सब दू हेलो हेलो कक दुक तुई जो गरंगी मालायलिया हाके तीनी बागिले जें कक दुक तुई तई गरंगलाया दं मानी चाओ तंगी हेंगले कक दुक चीनरो गरंगी मायंग जा खाइपानो ते कैसा जो आं अजरा कक दुक रमैनाय नै हेलो हेलो हाके चं आं तीनी नरक कक्लाम सासनेकित्सा जरा दंखबा नाइनाय चीनी फोनी दाम सिनी दाम सती बाजाक अजरा रेचा मूंग जंग तंगने रेचा मूंग हान लब सजाक रेचा मूंग दंगसा एवं जंग ते दंगसा पैलानो अरुण जमातियानि खक्तई ते दंगसा बिरला जमातियानि खक्तई जंग रेचा मूंग खाना चीनी जरा दंख ते गोबां कुक नो हाइके चिंग अजरा हाइनो हाइ करंग दा मान नाइ फिट नाइ हेलो हेलो हेलो

दिनै फनिं किचा दराजाक हायनि बागै जों दिनै गब्लामनो गोबां गुक सालायसिनै जराबो थांग्रिक थांग्रिक न' हायके जों दायब गब्लाम सालायनाय होनि वान सगै फायमानि एबा नरकनि बोखाक्तै गब्लाम शुक्र बै खोनानानै एबा सालायनायनि होनि

हा आबनि सिगां सालथांगेसियाव ओंगैतंमा जोंजालनि बागै मन्त्री बख्रक नरेन्द्र मोदी लुकुरक्न रांसाकता पाइदिहिनै कबखा केन्द्र हापांनि कायसिब्रै वातैमलनि हुगबार बोथायो चंजाक रांमारि बांग्रोनानि गसिमुं रोखा केन्द्र मन्त्री सभानि ककलाम सालाइमानि उल ककथुमते आवाइमुं मन्त्री अश्विनी वैष्णव अ ककन न साका बसाका हुगबार ख्लायनाय रकनि मैगोथों थाइगोथों थायरुबै रांमारि गोबां मान्दोनानि बागै वातैमलनि चंजाक रांमारि एम एस पि रां बांग्रोजाखा अ वातैमल हुगबार ख्लायनाय रक खकनै रासाय दक्सि साय रोजाक सोग रां मानानो मंत्री अक्रा प्रफेसर डॉक्टर मानिक साहा साका हास्ते व साखामनि सेबसाब हामक्रायो तै आबुनि मानमुं गोबां ख्लायथानि हास्ते हापां आलायदा फान्दुबै दंगो आबबायनो हास्तेनि रेफारेल बेमार रावो जार्सिहाय हलिका मिया आगरतलानि रविन्द्र शतबार्षिकी भवन साखाम नायखुंबाय संजाजाक हायुं बेरेमनि नार्सिं साल पालाइमुं पान्दाव मंत्री अक्रा अकक्न साका मंत्री अक्रा नार्स फ्लोरेन्स नाइटिंगेलनि लांमाव चुबा मुंनि सामुं तांमानो मैतुख्लायै साका बखरक्सा सय सय बरक मनुष्यनो हामजाखनाय मन्त्रियक्रा साका साखामनि सेबसाब हामग्रायनि बागै हास्ते हापां हास्तेव कायसा मेडिकेल युनिभार्सिटिस नामै दिसानानि साखथारै दंगो हास्तेव तैबो सुपार स्पेसियालिटि साखामतै कोतालमखल नायजाखमानि साखामनक आजुग रोजागानो एडिसि आमसायो कोताल मेडिकेल रोंनक कतर कायसा स्नामै थिसा जागानो होनैबो साका मन्त्रियक्राते बसाका ओ खेपेन खरक सारा बाचि थाम नार्सिं स्टाफ सेबुक चितक जाखा तैबो खरक सारान चितक जागानो चरिलाम ब्लकनि सुतारमुरा रेमचिनै रोंनग सिपाहीजला हांकर बेरेमनि शिबिर संसाजाखा हांकर नायकल फांबाय संसाजाक अ शिबिर सुतारमुरा बंशीबारि रामनगर नखबै गानागिनि आमसाइनि लुकुरक बरकनि नांमानि नायकल फांनि सेब नाहारका नायकल फांनि अ सेब मानमाबाय खा तंथगलायजाक आमसाइनि लुकुरक शिबिर मानजाखा सिपाहीजला हांकरनि हांकर नायकल फां सिद्धार्थ शिव जासवाल पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान तीन निशिमी मंडल फरंगमुं पांडा चेंगजागानो मिया आगरतला ककतुमा थुमनाय रकनि थुम प्रदेश बीजेपीनि खुकफां सुब्रत चक्रवर्ती अककतुमा न रेखा बतै बसाका तीन आगरतलानि नागेरजलाव मन्त्रियक्रा प्रफेसर डॉ मानिक साहा अ सामुं बुतांन चेंगै रिवानो सेन्ट्रल बोर्ड अफ सेकेन्डारी एडुकेशन बाय नायकल जाग्रेम चिनि आमजक मुंनि ओंखारि साख्लाय जाखा मिया ओंखारि साख्लायै सिबिएसई साखा खरक चिसनि रासाय दक्सि सारसायनि गोबां स्रोंनाय रक मानजाखा आबनि बिसिंग पासंखा खरक चिबा रासायसनि सायनि गोबां स्रोंनाय रक दाख्लाय बिसिब पासंमानि मारि ओंखार रावो चारजिबा दशमिक नै त्रिपुरा क्रिकेट एसोसिएशन बाय नाइकलजाक तपन मुकुमु अरनि नकआउट क्रिकेट बाताइमुंग कस्मोपलिटन क्लाब तै स्पोर्टलिंग क्लाब सेमिफाइनल आशाका मिया क्वार्टर फाइनल थंमुं कायनि संसाजाखा एमबीबी स्टेडियम स्पोर्टलिंग क्लाब विकेट कायसिनि बाय हार्बे क्लाब न तै नरसिंगरनि पिटिए थंखलाव कस्मोपलिटन क्लाब रान कायदक बाय बनमालिपुर क्रिकेट क्लाब न मेचेनखा बोसकां सालचिबाव सेमिफाइनल थंमुं अंगानो ताबुक नबार तिबानि ककतमा बोसकां दाम नैचिब्रियो हास्तेनि उनकौटि तै सालचि हांकर गोबांखे वातै वावानो होनै हजा ख्लायका नबारतिबार नायखं आबनकारि गुबुनि जालावबो फेरांखगै दामसाव ब्रैचिनि सिमि बाचि किलोमिटार दवै नबार कतर फायै वातै वावैमानो तिनि सालनि तुंमारि साखाव थामजिब्रै डिग्री तै खामाव नैजिथाम डिग्री सेल्सियासनि गानागिनि तंगानो आइजुग बोखाखौ खामानि तुंमारि तंमानि नैजिथाम दशमिक ब्रै डिग्री सेल्सियास फुं दामबातामै सति थामजि जरा वातै वाका स्नि दशमिक सा मिलिमिटार ककब्रक बाय ककतुमा परिमं ताबुक जरातै अरन पाइखा उलनि ककतुमा आवायंगानो हरनि दामसिनि तामै सति ब्रैजिबाव

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के

खोनायदोंगो सारासा पॉइंट अफ मेगा हर्स एफ एम उज्जैन दजारा स्टूडियो आसुक सांग विनोदा हंगे जों हाजोगनि रोजाबं बान्दो खोनालाय दङ खोनाथ थब रोजाबं र हंगे खाख्लाय अनुरगन जारा जतन टिउन खायसाखना सारासा पॉइंट अफ मेगा हर्स एफ एम उज्जैन दन खोनाय दं बायखना हंगे जतन न बान्दा पाय आसाक जरा खोनाय दंनि बागै गबक जाव हंगे नरकनि लगिन नरकनि हामसाक पुं तंका कायसे जों बजिनि खारक ब तं थब हंगे दिनि सांग्रं साल जों दाबो हाजोगनि रोजाबं बान्दा न दै दुलुय दङ आबनि याखल मैदुमान बान्दा পাই থাকো খনাত খরাং পান্দা ভাইকে নদী বুড়ি দামনি দামই সতী থামচি জরা নরকি কাজা রং টং নাই হুকাই নরক আনলো গিরি টংদি খনাই টংদি খনাত রোজাব মরক হুকা ফাইদি ও জরাও চ তাবু খনালাই নাই হাইনো হাই খনাত রোজাবং ও রোজাবং তাবুক চ জাদুনি রোজাবং রোজাবনাই শিবু মক আংকে ফাইদি খনালাই নাই বিনি খরাঙ্গ খনাত রোজাবং ন

0: से यगर हिम ठाकुर लुक से मन यना लुक से
1: नरोनी बागे हैनो हाइटे तंगशा जातो निरचापुं खनाई तोंग दी लोगी तोंग दी।

रुकनाई थोंगो सारासा पॉइंट डॉग मेगा हर से फेम उज्जैन तो एवं 101.6 मेगा हर से फेम उज्जैन तो नहीं हाथ से नहीं रचा मो पांडा अंके और जरा स्टूडियो आ चुक जा गांग भी नोता अंके तबो का जिन्हें स्टूडियो ने जरा खोगो तामुई थोंगो दिबोल नहीं दाम जिन्हें अंगे मुफली स्नी अंगजा अंके और जरा वो नरक चतुर नो हाई नो हाई दिबोल का हम ते नरक नहीं तीन निशाल चतुनी बागे नो का हम लाइने उठुन शामों हुमों रोक तो चतुन पाई लाइ हाय दा संग साल ब्रुम ब्रुम नो चंग फुंग आई का कई नो फुंगो बाजा मानी यागुलो खेनो चंग सामुंगो चेंगलायो जतनो जाने जाने सामुंग बाय जाने जा पाइलाया के बनि फानो के बफानो एरेंग एरेंग ले आचुगि दाङे हायदाना चंग चराइनि सिमि चेंगै अकरा चाकरा जतनो चंग चराइ रक्न ब नाय नाय का हंके दाबुक जतनो बाचा खेनो रंगनगो थांनानि बागे रेडि तिया रंगै थांनानि नांगो माइति जावै हायदा गेरंगनगो थांगि बर परिव अबा हायखेनो गोबां माजो तो बर रक्न जाने जाने सामुंग बाय जाने जा ख्लाइ थानि पाइलेया अंगो हायदा गे दिबोर

जों अजराव खनालाखिया खनाता तोग्रो चापुं के फायदि हायनोहाय खनालाय फिनाय देतांशा खनाता तोग्रो चापुं अजराव बुखु पुतुल देबरमानि खरांबाय जादुनि रे चापुं खनालायने खनाय तोंदि लगि तोंदि

गेजेरावा हेनो हेरेचा मुंखना लायने जों लाल रिन पुया मूल समनि खरांग बायरे चापचा कर चापों सिंखना लायने गेजेरावा खनादि खनाय तुंदि लगे तुंदि सारा सा पॉइंट ऑफ मेगाहर्ट्ज एफएम उचेंतवा

हेलो हेलो हेलो धर कक्टक खाईनो दंग पियाबा आंबो कक्टक यासागैनो दंग कक्टक खरांसे खोनालाया गाहायके कक सानायबाना गाहाय नहाय कक्टक यासाखफिनाय साबतं हेलो हेलो हेलो खोनाया हायनोहाय साइमनिया साबजानि ओंखा ओमफ्राय जायदगैनो कक्टक खाई दङ पियाबा चिनोर' कक्टक यासागैबो दङ हायफनो कक्टक खरां खोनाया ओमफ्राय फुंगोबो गिसा बाहायनो खरां खोनाया हिनि साइमानखा ओमफ्राय यासाग नायनाय खोदा खोना हेलौ हेलौ खोनाया ओंखायफायदि अजराव रोजाबं खोनालायनो खोनादों रोजाबं नरकनि बागै खाख्लायो नरक जोथोनो खोनादों जाखोनो रोजाबंनो मैदुमानो बान्दो हंखेजों कक्राव हिन्दी रोजाबंजों खोनालायो हंखे अजराव हिन्दी रोजाबंजों खोनालायनाय हंखे खोनाय दंदि दे लगि दंदि

आजसँग मुइतुमान पान्ताव मुइतुमान माने कब्रक सारायने हिनी अचरा वांगा चुक्साको स्टुडियो हो उनके फाइदे कोक दुग्या सक्नाय हेलो हेलो साइमेनिया हैन होय खनाया कोक दुग किसा हामिया न

बजाएर उनीहरू खानाइदेऊ 101.6 मेगा हर्स एफएम उज्यन्त के स्टुडियो आँसुक छ गाङ बिनता मुइतो मानव पान्दा नै दुले मुइतो मानव पान्दा चाहिँ मुइतो मान माने कक्रक सालाइ दङ चाहिँ सलाइजाक जराव चाहिँ गोबां मा चाहिँ मुइतो मा खालायलायो तामनि हिनबाले चाहिँ जरा बेबाक्सा बेबाक न सलाइजाको सानैनि थाखाहानके गोबां मा बर' रक दाबक इखेबो न मुइतो खालायलायो मुइतो मानो बाहायखे तामो हिमालय नायै नायदि जरा कासेयाव जों दाबुक्त' मैखुमु हाब्लग मैखुमुरग बेरमानि जरा हेंखे गोबां मा अख्ला जागारनि खुग' जों खानाव मैखुमु आथकिदेसो मैखुमु कथक ग्रै हिने बेलायन कथक हिनि फियाबा दाबुक मैखुमु आथकिदेरग बेरमानि आसोग नुब्लिया आसोग बांथालिया हाथिरगब बायनानै हानपानसे मानथगिया हायादा हेंखे मैखुमु हाब्लग्रगनि बहायन मरग रांमारि जुदा मरग मानि जुदा हायादाबा सोकांग जुदा बोसोग दं मानि हायादा हेंखे दाबुक बोसोग ओंगैखा जों हाथिरग थांखा हांखासे मैखो

नोजोराव जों खोनालाय दङ खोनाथाव रोजाबमंतै मैदुमान पान्दाव मैदुमान मानि गग्रक सालाय दङ नरकनि बागै गायसा साख्लायमं आकाशवाणीनि फिल चुकुचि बिसि बुंमानो रोगै खोना एबा फासाल' आगुलिनि सुकान्त एकाडेमिनि एकाडेमिव सानजा दामदक एबा 6 PM दामपुरु क्लासिकल म्यूजिक कन्सार्ट होंनाय जतन आरो फाइ मानजाकनि बागै कबक जाओ जतन नरक फाइ नायफायदि जिनि आकाशवाणीनि फिल चुकुचि बिसि बुंमानो रोगै आलायदा गायसा जदा पान्दा जुगालि जाक खोनांनायाबो आगरतलानि सुकान्त एकाडेमिव सारिकनि एबा सानजानि दामदक एबा 6 PM हायनि बागै नरक जतन नकय जाओ नरक फाइ मानजाकनि बागै हिंखाय जों मैदुमान पान्दाव मैदुमान मानि कक्रक जों सालाय दङ हिंखाय पियानो रक बाय गोरोंनानि मुजुं फानो गोरोंगै मानिया दामै हिमालय चिनर कक दुखिसा हामिया आङै दङ दिनैनि बागैलाय गोरोंगै मानगोला गहनै मानो हिंखाय जों कक्ट गोबां मानो दंना नरक अजारावबो मैदुमानैनो थांखोना गोबां मा कक्रक मैखोमो हाफ्लक रक नतैयो एबा मैखोमो आथकिरि रक नतैयो एबा बाक्सा बामान सोगै दंखाना

पेरमानि जागाले गोबां मानो पेरो हाय दबा हांखे जों बाक्सा बाक्सा ताबुक मुइटु ख्लाय दंखना पेरमानि रमदि बाक्सा बाक्सा चिनियाव र' आगि पेरो र' खिनि मुइटु ख्लाय दंखना हाय दा हांखै जे जागाव पेर फानो ताबुक आरो पेरिया र' खनङै मानो आमते हाय अंगो हांखा बहाय र' गंगो मुइखौ महाब्लग र' बहाय न' पेरमानि जागा हांखे त' मार्केनो पेरो हांखे पेरिया हांखे त' नों जेसो खनो रुतुदि बरले मानायबा हाय दा हांखै जरा तो त्रुक त्रुक थांगी दंगो हंगा फायदे जरा हाइनो हाइ नरकनि बागै दे चापुं खना लायने हंगै नरकनि बखाखते मुइतुमान मानि कग्रबो खनाय मानले हंगा बातेनि ते कुबुनि साल रगो जों गबांग माते बो मुइतुमान मानि कग्रबो सालायनाय हंगा फियाबातेनि तो कंतु खामियानि बागै नरक बाय करेंगै मानले याबा हंगै रचा मंग गबांग खनावै जों नरकनि खानो जे मानसाक तंग थग्रिनानै जायदावगान हंखे नरकनि बागै अखनाथ तग्र चापमुं खनाय तंदि लगि तंदि बेलाय नखनाथ तग्र चाप

रोखनाय थंगो सारा सपोइन डक मेगा हर जाय फेमु जें तो जरा स्टुडियो आ सुक्सा गांग बिनोता अंके जरा ओचिने स्टुडियो नि जरा खगो थामै थंगो दिपोनि दाम नै थामै मुफली नै चि डक अंके जरा नरक जतन न हेनो हाय दिपोन का हम तैन रोखनि तिनि नि साल जतनि बागिन का हम लाइनै नि इंथु नंकै आ जें खना तो खरांग पांदाव खना तो रचा मंग सं खना लाइनै नरक न थासिं गो बांग साका रचा मंग खना लाइनै गक बरक खना तो रचा बुंग रखाय दा अंके पांदा पाय सक जरा लगी दं दि ते खनाय दं दि जरा ओ ट्यून खै दं दि 101.6 मेगाहर्ट्ज एफएम उजेन तो न अंके आ फाइदि खना लाइनै रचा पों पिया रचा पों खना लाइनै सकांग नरक न हाय न हाय जतन न गबगो आ चिनी आकाशवाणी नि बिसि फिल चुकुची बुंमानो रगै खना सुकान्त एकाडेमी व पांडा जगाले जाक दङ क्लासिकल म्युजिक कन्सर्ट अ पांडा व जतन न मानजा फाइनानि बागै गबंग जाव नरक जरा मानकांकाय चिनि अरनि जगाले जाक पांडा न खना फाइदि ते नाय फाइदि हिंगे फाइदि जराव रुचापुं खना लायनाय खना तो रुचापुं नरकनि बागै खनाय दंदि लगै दंदि

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, इस वर्ष भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स का लक्ष्य है बहुपक्षीय और समावेशी विश्व व्यवस्था। निर्वाचन आयोग ने 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया SIR के तीसरे चरण की घोषणा की। केरलम में कांग्रेस नेता VD सतीशन ने राज्यपाल से मुलाकात कर सरकार बनाने का दावा पेश किया। उत्तर प्रदेश में पिछले

0: 24 घंटों में बारिश, तूफान और बिजली गिरने से 70 से अधिक लोगों की मौत। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग के बीच पेचिंग में वार्ता। होर्मूज जल डमरू मध्य को खोलने पर बल दिया। और गांधीनगर में एशियाई सीनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में अजित नारायण ने पुरुषों के 71 किलोग्राम वर्ग में दोहरे कांस्य पदक जीते। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इस वर्ष भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स बहुपक्षवाद को सशक्त बनाने, सतत विकास को बढ़ावा देने, आर्थिक लचीलापन बढ़ाने और अधिक समावेशी वैश्विक व्यवस्था निर्मित करने के लिए मिलकर काम करेंगे। आज नई दिल्ली में श्री मोदी से मुलाकात करने आए ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों और प्रतिनिधिमंडल के प्रमुखों के साथ बातचीत में श्री मोदी ने कहा कि ब्रिक्स उभरती अर्थव्यवस्थाओं के बीच सहयोग को आगे बढ़ाने और ग्लोबल साउथ के देशों की आकांक्षाओं को आवाज देने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में उभरा है। ये बैठक नई दिल्ली में जारी ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक से अलग हुई। इससे पहले ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक के अपने शुरुआती संबोधन में विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा कि शांति और सुरक्षा वैश्विक व्यवस्था के केंद्र में है।
1: हमारी चर्चाओं का उद्देश्य एक ऐसा सतत विकास सुनिश्चित करना होना चाहिए जो समानता के सिद्धांतों तथा साझी लेकिन अलग अलग जिम्मेदारी की भावना पर आधारित हो। तकनीकी प्रगति वैश्विक परिदृश्य को बदल रही है। इसका उपयोग सुशासन और समावेशी विकास के लिए प्रभावी रूप से किया जा सकता है। आतंकवाद के खिलाफ सहयोग मजबूत करने पर सभी देशों की गहरी और साझा सहमति है।
0: बैठक के दौरान ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्री पारस्परिक हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी कल संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली के 6 दिवसीय दौरे पर रवाना होंगे। 5 देशों की यात्रा के पहले चरण में श्री मोदी कल अबू धाबी के लिए रवाना होंगे, जहां वे व्यापार, निवेश, ऊर्जा सुरक्षा और उभरती प्रौद्योगिकियों पर केंद्रित उच्च स्तरीय चर्चाओं के लिए संयुक्त अरब अमीरात पहुंचेंगे। ये यात्रा दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों में तीव्र वृद्धि के बीच हो रही है। एक रिपोर्ट।
2: भारत के यूएई को एक्सपोर्ट्स अब $36.63 बिलियन से अधिक हो गए हैं, जिससे एमिरेट्स भारत का दूसरा सबसे बड़ा एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन बन गया है। प्रमुख एक्सपोर्ट्स में रिफाइंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, सोना और डायमंड ज्वेलरी, इंजीनियरिंग गुड्स, गारमेंट्स, फार्मास्यूटिकल्स और प्रोसेस्ड फूड शामिल है। इम्पोर्ट्स की बात करें तो यूएई से भारत आने वाली सामान में मुख्य रूप से क्रूड ऑयल, सोना और पेट्रोकेमिकल शामिल है। पारंपरिक व्यापार से आगे बढ़ते हुए अब दोनों देशों के बीच उच्च मूल्य वाले क्षेत्रों में भी सहयोग बढ़ रहा है, जिनमें सेमीकंडक्टर्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रिन्यूएबल एनर्जी, फिनटेक, हेल्थ केयर, क्रिटिकल मिनरल्स और सिविल न्यूक्लियर एनर्जी शामिल है। विनोद कुमार, आकाशवाणी समाचार, अबुधाबी।
0: निर्वाचन आयोग ने विशेष गहन पुनरीक्षण SIR अभियान के तीसरे चरण की घोषणा कर दी है। अभियान 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में संचालित किया जाएगा।
3: इस चरण में आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, ओडिशा, पंजाब, सिक्किम, त्रिपुरा, तेलंगाना और उत्तराखंड राज्य शामिल हैं। केंद्र शासित प्रदेशों में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, चंडीगढ़, दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव शामिल हैं। अभियान के दौरान 3,94,000 से अधिक बूथ स्तरीय अधिकारी 36,73,00,000 मतदाताओं के घर जाकर उनसे संपर्क करेंगे। तीसरे चरण में हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख को छोड़कर पूरे देश में मतदाता सूची संशोधन का कार्य पूरा हो जाएगा। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से सरफिरोजी।
0: केरलम में आज तिरुवनंतपुरम में आयोजित कांग्रेस विधायक दल की बैठक में VD सतीशन को औपचारिक रूप से नेता चुना गया। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: कांग्रेस के वरिष्ठ नेता VD सतीशन ने आज शाम राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अरलेकर से मुलाकात की और केरलम में नई सरकार बनाने के लिए औपचारिक रूप से अपना दावा पेश किया। कांग्रेस विधायक दल की आज शाम तिरुवनंतपुरम में बैठक हुई और उन्होंने VD सतीशन को अपना नेता चुना। इस बीच निवर्तमान मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन को CPM के विधायक दल के नेता के रूप में चुना गया। तिरुवनंतपुरम से स्मृति की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
0: तमिलनाडु में ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम AIADMK के महासचिव एडप्पा डी पलनीस्वामी ने आज राज्यपाल विश्वनाथ अरलेकर से मुलाकात कर उन्हें SP वेलुमड़ी के नेतृत्व

वाले AIADMK विधायकों के गुट के संबंध में एक याचिका सौंपी। पूर्व मुख्यमंत्री ने राज्यपाल से इस मुद्दे को अध्यक्ष JCD प्रभाकर के समक्ष उठाने का अनुरोध किया। SP वेलुमणि के नेतृत्व वाले गुट के 25 AIADMK विधायकों ने OS मनियन द्वारा जारी व्हिप की अवहेलना करते हुए TV के सरकार के पक्ष में मतदान किया था। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने कहा है कि देश में कच्चे तेल, एलपीजी और प्राकृतिक गैस की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी कदम उठाए गए हैं। नई दिल्ली में पश्चिम एशिया के घटनाक्रम पर अंतर मंत्रालयी प्रेस वार्ता में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि घरेलू एलपीजी आपूर्ति सुचारू रूप से जारी है।
4: भारत सरकार ने कई इफेक्टिव स्टेप्स लिए हैं, जिसके चलते हमारे पास पेट्रोल, डीजल, एलपीजी और नेचुरल गैस के पर्याप्त स्टॉक्स अवेलेबल हैं। हमारी रिफाइनरीज ऑप्टिमम कैपेसिटी पर ऑपरेट कर रही हैं और एलपीजी प्रोडक्शन भी इंक्रीज किया जा चुका है। हमारे किसी भी रिटेल आउटलेट पर और एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप पर कोई ड्राई आउट रिपोर्टेड नहीं है। सब जगह पर नॉर्मल ऑपरेशन चल रहे हैं।
3: पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग सचिव मुकेश मंगल ने बताया कि भारतीय व्यापारिक जहाज हाजी अली ओमान के जल क्षेत्र में कल तड़की आग लगने से कथित तौर पर डूब गया।
5: एन इंडियन डो
6: सोमालिया से शारजाह जा रहे भारतीय जहाज हाजी अली पर 13 मई की सुबह ओमान के समुद्री क्षेत्र में हमला हुआ, जिससे जहाज में आग लग गई और वो डूब गया। जहाज पर सवार चालक दल के सभी 14 सदस्यों को ओमान तटरक्षक बल ने सुरक्षित बचा लिया। भारत सरकार ओमान सल्तनत के अधिकारियों, भारतीय मिशन के अधिकारियों और संबंधित समुद्री एजेंसियों के साथ संपर्क में है।
5: इंडियन मिशन ऑफिशियल्स एंड रिलेवेंट मैरिटाइम एजेंसीज।
3: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 7 अपीलों के मद्देनजर अपने संबंधित मंत्रालयों और विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री की अपील के अनुरूप मंत्रालय स्तर पर एक वर्ष तक सोने की खरीद न करने का निर्णय लिया गया है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली सरकार राजधानी में कल से 90 दिनों तक मेरा भारत मेरा योगदान अभियान चलाने की घोषणा की है।
7: दिल्ली सचिवालय में पत्रकारों को संबोधित करते हुए श्रीमती गुप्ता ने कहा कि इस अभियान के अंतर्गत आवश्यक सेवाओं को छोड़कर दिल्ली सरकार के सभी कार्यालय सप्ताह में 2 दिन घर से काम करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार निजी क्षेत्र को भी सलाह जारी करेगी कि जहां भी संभव हो सप्ताह में 2 दिन घर से काम करने की नीति अपनाएं। वहीं सरकारी वाहनों में पेट्रोल डीजल की खपत 20% तक कम करने का लक्ष्य रखा गया है।
8: हर मंडे को हम मेट्रो मंडे के रूप में काम करेंगे, जिसमें हम सभी मंत्री, हमारे सभी वरिष्ठ अधिकारी और कर्मचारी संभव हो मेट्रो से ऑफिस जाएंगे और वापस आएंगे।
7: इसके अलावा दिल्ली सरकार ने सप्ताह में 1 दिन नो व्हीकल डे मनाने की भी अपील की है। आरजू के साथ आकाशवाणी समाचार के लिए क्षित कुमार वैद्यान।
3: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है।

0: साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग

0: ने आज बीजिंग में वार्ता की। व्यापार, प्रौद्योगिकी और क्षेत्रीय सुरक्षा को लेकर तनाव के बावजूद दोनों नेताओं ने टकराव के बजाय सहयोग पर बल दिया। व्हाइट हाउस के अनुसार दोनों नेताओं ने इस बात पर सहमति व्यक्त की कि ऊर्जा का निरंतर प्रवाह सुनिश्चित करने के लिए होर्मुज जल डमरू मध्य खुला रहना चाहिए। चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग ने टकराव के बजाय सहयोग को बढ़ावा देने पर बल दिया और कहा कि चीन और अमरीका को प्रतिद्वंद्वी नहीं बल्कि साझेदार होना चाहिए। श्री ट्रंप ने कहा कि अमरीका चीन के साथ व्यापार और निवेश के अवसरों का विस्तार करने के लिए उत्सुक है।
1: अमेरिका और चीन के लोगों में कई समानताएं हैं। हम साहस और उपलब्धि को महत्व देते हैं। दोनों देशों के एकजुट होकर काम करने से हमें इन मूल्यों का उपयोग करके इस क्षेत्र और विश्व के लिए अधिक समृद्धि, सहयोग, सुख और शांति से भरे भविष्य का निर्माण करने का अवसर मिलेगा।
0: इस बीच अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने चीन को चेतावनी दी है कि ताइवान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई एक भयानक गलती होगी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग की मुलाकात के बाद ताइवान के प्रति अमेरिका की नीति में कोई

0: को सुख और शांति से भरे भविष्य का निर्माण करने का अवसर मिलेगा।
1: इस बीच अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने चीन को चेतावनी दी है कि ताइवान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई एक भयानक गलती होगी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग की मुलाकात के बाद ताइवान के प्रति अमेरिका की नीति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। श्री रूबियो ने ताइवान को लेकर चीन की धमकी पर कोई जवाब देने से परहेज किया है। इससे पहले राष्ट्रपति जिनफिंग ने चेतावनी दी थी कि ताइवान मुद्दे पर गलत तरीका अपनाने से चीन और अमेरिका के बीच टकराव और संघर्ष हो सकता है। ये टिप्पणियां दोनों देशों के बीच ईरान संघर्ष, ऊर्जा सुरक्षा और व्यापार जैसे व्यापक मुद्दों पर हुई बातचीत के दौरान आई। उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटों में बारिश, आंधी और बिजली गिरने से 70 से अधिक लोगों की मौत हो गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिला मजिस्ट्रेट और संबंधित अधिकारियों को घटनास्थल का तत्काल सर्वेक्षण करने का निर्देश दिया है। एक रिपोर्ट।
2: मौसम में आए अचानक बदलाव ने राज्य भर में भारी तबाही मचाई है। आंधी, भारी बारिश और बिजली गिरने से कई लोगों की जान चली गई। प्रयागराज में 21, भदोही जिले में 15, मिर्जापुर में 18, फतेहपुर में 9, बदायूं में 5 और बरेली जिले में 4 लोगों की मौत हो गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की और निर्देश दिया कि मुआवजा राशि, बचाव अभियान समेत अन्य कार्यों को सोशल मीडिया पर अपडेट किया जाए और सभी जिलों को हर 3 घंटे में हालात का अपडेट भेजने के लिए भी कहा गया है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: इस बीच मौसम विभाग ने कल अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, केरलम, माहे, दक्षिणांतरिक कर्नाटक, पश्चिम बंगाल में हिमालय की तराई क्षेत्रों, सिक्किम, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कारिकाल और अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। गुजरात में एशियाई सीनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में आज अजीत नारायण ने कांस्य पदक अपने नाम किया। पुरुषों के 71 किलोग्राम वर्ग के क्लीन एंड जर्क और समग्र दोनों स्पर्धाओं में अजीत ने पदक हासिल किया। प्रतियोगिता में अजीत कोमल कोहर और ज्ञानेश्वरी यादव के बाद पदक जीतने वाले तीसरे भारतीय बन गए हैं। धर्मशाला में आईपीएल क्रिकेट में मुंबई इंडियंस और पंजाब किंग्स के बीच मुकाबला जारी है। पंजाब ने 17वें ओवर में 7 विकेट पर 140 रन बना लिए हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, इस वर्ष भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स का लक्ष्य है बहुपक्षीय और समावेशी विश्व व्यवस्था। निर्वाचन आयोग ने 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया SIR के तीसरे चरण की घोषणा की। केरलम में कांग्रेस नेता VD सतीशन ने राज्यपाल से मुलाकात कर सरकार बनाने का दावा पेश किया। उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटों में बारिश, तूफान और बिजली गिरने से 70 से अधिक लोगों की मौत। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग के बीच पेचिंग में वार्ता। और गांधीनगर में एशियाई सीनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में अजित नारायण ने पुरुषों के 71 किलोग्राम वर्ग में दोहरे कांस्य पदक जीते। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।